शख्स को अपना आइडियल ना बनाए कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूं, हरगिज नहीं। चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उस्ताद ही क्यों ना, कोई जो मर्जी हो, अपने दिल से पूछे कि हया का तकाजा किसमें पूरा होता है और क्या करना चाहिए। ये चीज जब तक आपके अंदर से निकलेगी नहीं ना, इंसान परस्ती, उस वक्त तक आप दीन पर अमल नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम लोगों को आइडियल बना लेते हैं, वो करते हैं जो लोग कर रहे होते हैं, फिर उसका हाल क्या होता है, आज लोग ये कर रहे हैं आप वो करेंगे, कल लोग वो स्टाइल छोड़ के कुछ और करने लगे फिर आप उनके पीछे चल पड़ेंगे। कल मुझे खत मौसूल हुआ, उसमें किसी ने अपनी मुश्किल ये लिखी हुई थी कि वो स्कूल में टीचर है और साथ कैसेट से कुरान का तर्जमा पढ़ रही, जो पढ़ती हूँ क्लास में भी बच्चों को भी बताती हूँ, बता रही थी कि बहुत सी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीख रही हैं, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला ये हो गया कि एक बच्ची जिसने कहीं कुरान की तालीम हासिल की है उसका अमल कोई अच्छा नहीं, ऐसा बच्चियां उसको एडलाइज कर लेती हैं और बहुत सी बातों को ये कह के टाल देती हैं कि वो फलां ने जो ये आलिमा का कोर्स कर रखा है वो नहीं कर रही तो हम क्यों करें। तो ये चीज बहुत खतरनाक है। जब भी आप किसी को दीन पढ़ाएं उसको मेयार अल्लाह और उसका रसूल बताएं, बस ना अपनी जात बताएं ना कोई और बताएं, हर एक का अपना मामला अल्लाह के साथ है। बस ना बाजू कत क्या था, कोई बड़ा स्कॉलर आता है वो कोई बात कह जाता, हम कहते अच्छा ये बड़ा स्कॉलर है लिहाजा इसकी बात चल पड़ते और भूल जाते हैं कुरान में क्या हुक्म था या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। ये किसी इंसान को देखते हैं कि बड़ा नेक है लेकिन वो दीन के कुछ अहकाम पे अमल नहीं कर। कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत सदका खैरात करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। अब आप भी नमाज छोड़ बैठेंगे, कई लोग छोड़ बैठते हैं, वो कहते हैं लोग फलां भी तो नहीं करता, चाहे आप सदका खैरात उस जितना करें या ना करें। तो ऐसा नहीं करना हमको, या हम देखते हैं कि फलां शख्स बड़ा पॉपुलर है उसकी तो हर बात ही सही होगी इसीलिए तो उसको ये इज्जत मिली, नहीं हरगिज नहीं। किसी को भी अंधा दोनों आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना, किसी से इम्प्रेस नहीं होना, खुदा के लिए लोगों का खौफ, बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है, उसी का हुक्म बड़ा है, कोई बड़ा नहीं, बाकी सब बंदे हैं मखलूक हैं। हाँ कोई उम्र में बड़ा है कोई मर्तबे में, इज्जत करें बस इस हद तक, लेकिन उसके पीछे रह के अपने दीन और अपने उसूलों और अपने प्रिंसिपल्स को नहीं बदलना। आपको पता है मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी पाकिस्तान की, मेरे टीचर्स मेरे हिजाब का मजाक उड़ाते थे, बहुत अदब करती थी, बहुत एहतराम के, मैं कभी यूं भी सीधे अकड़ के नहीं खड़ी, हमेशा झुक के बात करती थी, लेकिन जो बात वो दीन के खिलाफ कहते थे उसको नहीं मानती थी कि मुझे तो अल्लाह का हुक्म मानना है, उस्ताद का एहतराम, अदब, मोहब्बत, ताजीम, खिदमत, जो कुछ भी मेरा फर्ज है वो मैं सब करूंगी लेकिन बात अल्लाह की मानूंगी, इसलिए कि मैंने वापस अल्लाह के पास जाना है, इस शख्स से न जजा लेनी है न सजा लेनी है, ये तो एक वक्ती तौर पर एक शख्स के साथ मेरा मामला है, बाज़ोकत एक लंबे अरसे के लिए, बाज़ोकत छोटे अरसे के लिए, ये तो नहीं कि हम जहां जाए वैसे ही बन जाए। जब आपको ये याद रहे ना कि वापस अल्लाह के पास जाना है और उसने हिसाब लेना है तो फिर कोई इंसान मेयार नहीं बना करता। खिलाड़ियों के जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर नजर पड़ जाती है जबकि नीयत ऐसी नहीं होती, क्या इस सूरत में खेल ही ना देखना चाहिए, ये तो आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए कितना फितने का सबब है और कितने आपकी नजरें बार बार गुनाहगार हुए चले जा रही हैं और कितना जरूरी है ये खेल देखना कि उसके बगैर गुजारा ही नहीं, ये तो आप खुद ही फैसला करेंगे। ऐसी औरतों के लिए पर्दों के क्या अहकाम हैं जो घरों के अंदर काम करती हैं जबकि वो आजाद औरतें हैं, वो बेचारी हैं तो आजाद लेकिन ना होने के बराबर, उनकी आजादी क्या आजादी है। काम वाली औरतों के अहकाम निस्बतन नर्म होंगे आजाद खुद मुख्तार और घरेलू हिफाजत वाली औरतों के, अगरचे गुलामी नहीं है लेकिन यह भी उससे मिलती जुलती चीज है, इसलिए उनका हुक्म आम औरतों से फर्क होगा। क्या डॉक्टर से अकेले में चेक कराना दुरुस्त है, इसमें एहतियाती बरतनी चाहिए, बहुत ही कोई ऐसी मजबूरी हो कि जिसमें कोई और हल ना हो तो और बात है। जी ये डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि ये तो इंग्लैंड वगैरह में भी ऐसा नहीं होता, औरत के साथ कोई और औरत होती है, डॉक्टर्स बिल्कुल तन्हाई में चेक नहीं करते, या नर्स होती है या कोई और स्टाफ का शख्स होता है, तो ये इंतहाई की बात वही बात हो जाती है ना, जैसे उस औरत का एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई भी नहीं तो वो उसको रखेंगे मोर्चरी में डालेंगे करेंगे, एक और सूरत है, लेकिन अगर आम हालात है तो साथ किसी को लेकर जाइए। नौजवान खातून किसी ऐसे इदारे में पढ़ाती है जहां हिजाब की इजाजत नहीं, उसे क्या करना चाहिए, ये तो उसको पता है कि वो अल्लाह के हुक्म को किस तरह माने, वो अपने इदारे वालों से बात करे, क्या मुश्किल है। अगर वो यहां पर पढ़ाती है मुसलमान मुल्क में तो इन आयात को समझकर वो अपने इदारे वालों को समझा दे,

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।